0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
1: Yo Krishna Sar FM
2: 94 megahertz. Krishna Sar jattike tez.

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
1: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
2: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
3: आज यहाँ कहाँ भटक थियो?
4: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
3: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर के आम के बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
4: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
3: संपर्क नंबर है 98487-27916।
5: ए रुक रुक रुक,
6: के भयो, किन कराएको यस्तो?
5: दाई यस्तो पनि हुन्छ र, 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
1: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
2: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीबीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
1: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
2: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
7: सूचना सूचना सूचना, स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
8: विश्व थायराइड दिवसको उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राईद्वारा थायराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
7: हजुर, थायराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500।
8: डाक्टर अल्ताबन राई, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट, NMC नम्बर 11504।
7: सम्पर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, बिपी चोक नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 081-531-860, 081-531-861 र मोबाइल नम्बर 98-584-861। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, बिपी चोक नेपालगञ्जमा आजै नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र 500 लिन नभुल्नुहोला।
9: यो कृष्ण सार FM
10: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: बुढुहा कान के समस्या बा, उपचार कराइकला कहाँ लैजिदा हो?
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई, ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुनना, कान दम्मा होइना, विटामिन के उपचार और परामर्श, वो लंबा समय से कान पकती रहले, कान के जालिम पाल परल, कान हड्डी खाइना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना, विटामिन के लाग कान में लगाइना, सस्ता और महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए, जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसी मशीन फिर वहाँ मिला।
0: ए ओसिड हो कला से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही टा।
1: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697 9858236697 ओ 9814 83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
2: छोटो समय में धेरै संस्थामा डाक्टर इंजीनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेज में कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ।

0: सुन्न सुन त्यहाँ न त्यो डिम्बला ल्याएकी रहेछ नि त।
1: ए हो त
0: त्यहाँ हेर्न फोटो खिच्दैछ।
1: हो रहेछ यार, आइज आइज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
4: अनलिमिटेड
5: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 हैश डायल गरी वा एनसेल एप मा गई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: आबद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज़ कृष्ण सार जत्थे के तेज़।

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
2: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
3: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-389।
4: बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दाँत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375।
7: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
8: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
9: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
8: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
9: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
8: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
9: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
8: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
10: ओहो, आज डाइहा नै मजा लागत हो, मजासे दवाई करेना कहटु।
11: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपालके अनुभवी ओ उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
10: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
11: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाए
10: ए ओसी नो कला से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
11: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही
12: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है
4: सही वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
12: सुनो हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया एपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है
9: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए
12: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97-46-11-786-98-224-92-377
13: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य

0: बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी।

0: Toilet Bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: ओहो आज डाई हूँ नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात ठीक कहलो साची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
2: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहां कई जाएत
1: ए ओसिनो कल से उहां जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
3: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर इन्जिनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो पेन्टागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ
4: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाई मात्रै होइन बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ
5: नेपालगञ्जको बीपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीवीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ
4: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज
5: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570 के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ

0: Toilet Pony, extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
2: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ है।
3: होप इन्टरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
4: थप जानकारीका लागि
3: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98580-24462, 98580-20645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर नेपालगंज बाँके।
4: खुशीको खबर।
5: हाम्रै सहर नेपालगंजमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगंज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
4: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालका साथै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालबाट सुगर र थाइरोइडको उपचारका लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।
5: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
4: सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-239-80-665 र 98-482-80-465। नेपालगंज नेशनल अस्पताल, बीपी चौक, नेपालगंज।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: के

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: और का हाल खबर है आपके?
1: सब ठीक है, नमस्कार है।
0: नमस्कार सखी,
1: आप अपन हाल खबर बतावा जाए।
0: हमारी भी हाल खबर अच्छा है सखी, आपन बताओ। हाँ आप तो अपने बतेवे की हो रहे, तो भूल जाए थे का ऐसा है कि ये तो गर्म भी बहुत पड़त है का, इके वजह से दिमागे ना काम कर पावत है। दिमाग तो काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब गर्म की वजह से ना अब वो चीज बार बार याद आई जाते का,
1: वो चीज बार बार भुलाए जावा जाते, याद नहीं आवा था। याद होते तो आप तुरंत फिर कहते हाल चाल का है,
0: वही बात है।
1: मैं भी उल्टा, यानी कि गर्मी के असर कुछ ज्यादा पड़ गया है। आप का
0: भुलाए तो गए रहे, लेकिन वही चीज दोहराई दिया का, मतलब हमरे कहे मतलब ये है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो सखी अभी हफ्ता भर कैसे गुजरा आपके, मतलब
1: गर्मी के बैठी है, सामने बैठी है, बीचे में मतलब देखे में कस लागत है,
0: बीचे में।
1: अच्छा बीचे में ठीक है रहे सखी, अब जैसे आप बात हो ना परेशान हो पूरा, मतलब कहीं नहीं पाओ था कि गर्म अत्ता गर्म के तापक्रम बढ़ते ही जात है, तो वही तो ना सबके हाल है कि मतलब काम तो करे जात है ना, इधर उधर हर चीज काम करे पड़त है, घर के काम करे पड़ते, बहरे करे पड़ते, सबका बैठ के तो खाना कोई खा नहीं सकत है, लेकिन अब का करा जाए। लेकिन गर्म के तापक्रम ये जो गर्म बढ़त जात है और गर्मी के कारण से हर कोई परेशान है, वैसे हमरे सखी भी परेशान ही, और सखी चिंता न करो हमहूँ परेशान है ना, हमरे श्रोता लोग भी, आप लोग भी गर्म से तो परेशान हुई भी करियो, लेकिन चिंता न करा जाए। कार्यक्रम घर के घर अंगना में जो हम लोग आवा का है, तो ये गर्म के संबंधी कुछ ना कुछ हम लोग लाद के लाए हैं अपने गठरी में, जो जरूर आप लोग के समझ खोला जाए। इससे पहले भी आप लोगों का हम लोग गर्म के मौसम में पानी मात्रा वाला कौन फल खावा जाए, ज़्यादा सेवन करा जाए, उससे का फ़ायदा होते है, एक बारे में जानकारी दिया कर है नहीं सखी। तो
0: आप सखी
1: आज भी कुछ विशेष है, जैसे कहा नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसे चीज़ें होते जिके हम लोग ठंडाई बना के पिया जाते हैं, जिका शरबत कहा जाते है नी, तो ऐसे चीज़न में है कोई कोई के ऐसे नाम जो स्वाद रहा थे उसका हम लोग प्रयोग करके गर्म के तासीर से बच सका जाते हैं।
0: हाँ कि मतलब शरीर का भी ठंडक पहुँचे और दिमाग भी तरोताजा रहे।
1: हाँ तो हमारे सखी का भी दिमाग इनके तरोताजा करे कतिर, नहीं तो कहूँ हम लोग का कहूँ गीते संगीत ना सुनावे भूल जाए, फिर बाद में कह दें कि हाँ भूल गई रही,
0: अब याद दिलावे तरोताजा इनके करेक्ट परी, याद दिलावे के तो आप हो ही ना।
1: तो श्रोता आप लोग जाना जाते कार्यक्रम घर रंगनामा, हम दोनों सखी आप लोग के समझ आए गा है, तो नमस्कार।
0: नमस्कार
1: और साथ ही ना आप लोग जाना जाते हैं कि कार्यक्रम घर रंगनामा गठरी लेके आवा जाते, तो गठरी का जरूर खोला जाइए और आप लोग भी सुना जाइए हम लोग का, एक बजे से तीन बजे तक सुनते रहा जाइए, और ये गठरी माँ आप लोग का फायदा जनक कोई ना कोई विषय वस्तु रहा जरूर है। तो श्रोता सखी हमारे संपूर्ण सखी लोगन का कार्यक्रम ध्यान से सुना जाए, और ये कार्यक्रम में आज हम लोग जो भी विषय वस्तु लावा गा जो उनकी आप लोगों के घर अंगना में है नी, और ज़्यादातर आप लोगन के जहाँ जैसे कहा नहीं पहले कुआं रहत रहा है, तो अब नल ज़्यादा के प्रयोग होते, कुआं के प्रयोग कम हो गवा है, तो ऐसे ऐसे जगह में नहीं तो बहुत आदमी अपने अपने बारी में भी बोए रहा थे, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग चटनी में करा जाते हैं,
0: चटनी में प्रयोग कराते हैं।
1: हाँ तो इसे कौन चीज के चटनी
0: सोचा जाए कि का हो सकत हुई है।
1: हाँ बस चटनी के नाम सुन के हमरे सखी के मुँह में पानी आएगा है,
0: नहीं तो जरूर आप... है कि हमरे मुँह में पानी आएगा है, बाकी जो साथी लोग सुनत हुई हैं और हमरे सखी के तो बिल्कुल नहीं आया हुई है ना।
1: हाँ बिल्कुल नहीं आया। अच्छा। हम तो जानते रहे ना पहले
0: सामने
1: से।
0: रखा हुई है तो आप चट कर दी हो,
1: चट कर हाँ। चटनी के नाम है चट कर,
0: वही तो चटनी रखा हुई है सबसे पहले आप ही ना मनियो का,
1: लेकिन आप लोग सोचा जैसे श्रोता चटनी ना हो, चटनी में का प्रयोग करा जाते
0: प्रयोग होते हैं
1: तो विषय वस्तु आप लोग सोचते रहा जाए उससे पहले कि अब हम लोग शुरुआत करा गया है सखी, तो कुछ सुनाए दिन जाए गीत संगीत सुनाए के कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ावा जाए, उसके बाद तो, के बारे में तो हम लोग सुनाते रहा जाए।
0: हाँ तो सही ठीक है सखी, मगर थोड़ा सा व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाए कहा कि टाइम हो चुका है ना।
1: हाँ तो सखी चला जाए व्यापारिक विश्राम के बाद, और श्रोता आप लोग कार्यक्रम सुनते रहा जाए, हम लोग फिर आवाज आते हैं कार्यक्रम घर अंगनामा।
0: घर अंगनामा
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
1: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
1: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कहके तह दिल हुआ जाए।
1: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
3: नेपालगंज 12 मुक्तिपुरमा रहेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीले नेपालगंजको शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउँदै आएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न गरिएको निरन्तर प्रयासकै परिणाम स्वरूप विद्यालयले स्थापना कालदेखि नै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न संरचना र आवश्यकताका सबै कुराहरू सहज उपलब्ध हुने भएकोले विद्यार्थीहरूको पनि पहिलो रोजाई बनेको छ। विद्यालयले शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउँदै आएको छ। 25 वर्षको सफल यात्रासँगै युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमी भविष्यमा अझ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित अघि बढिरहेको छ। तपाईँका बालबालिकाहरूको लागि उत्कृष्ट विद्यालय खोज्दै हुनुहुन्छ भने शैक्षिक सत्र 2083का लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलिसकेको छ। सिट सीमित छन्, आजै निवेदन दिनुहोस्। शिक्षा, संस्कार र सफलताको पर्याय युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगंज 12 मुक्तिपुर बाँकी। प्रधानाध्यापक जीवराज भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 98582318।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: बड़ा सहारा दिखाई दियो गीत सुने का तिरक चंचल सुख हसीना। वैसे भी अब तब तारीफ के गीत संगीत बजाए तो अब जरूर याददाश्त तो तारो ताजा होएगा होई।
1: हाँ
0: होएगा।
1: हाँ
0: अब तो बोलियो ना।
1: नहीं बोलबे काहे नहीं,
0: अब नहीं कोई बोलियो कसम ना बोले एक बात ना यानी हाँ। कि कान में कुछ समस्या
1: होगा। नहीं नहीं हाँ ठीक है अब ठीक है।
0: तो सखी देखा जाए कि अब ऐसे हम लोग गीत संगीत से तरोताजा तो हो ही गवा जाता है।
1: और एक तो फिर आप ठंडाई वाला चीज बतावत रहो है ना।
0: हाँ, थोड़ा अभी बताया भी तो ना, अभी तो सोचे कहा रहा है ना,
1: मतलब टेलर दिए रहो ना।
0: हाँ टेलर दिया रहा है,
1: टेलर दिए रहो
0: ना दिया रहा, सोचेगा एक बात रहा है कि का हो सकत है। अगर पत्ते से बात करा जा तो शायद कोई ना कोई सखी या श्रोता बताए भी देती कि कौन चीज हुए।
1: लेकिन लेकिन लेकिन आप ठंडाई के नाम लिए रहो का
0: पेक मन लगा का ठंडाई
1: अब जो बताई हो तब तो का है ना पिया जी है। लेकिन का है कि अब वो ठंडाई तो बताया अब का हो सकत है ये तो नाम नहीं बता रहे हो आप।
0: नाम
1: है
0: तो
1: ना
0: बता
1: नाम
0: रहे
1: नहीं बता रहे हो। ठंडाई नाम सुन के ही कुछ दिमाग में कुछ तरोताजा हुआ और एक तो फिर दूसरा गीत।
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ
1: अब आप तो कृपा करके मतलब मेहरबानी करके बताई दो कि का हो सकत
0: है। लेकिन हम ठंडाई के साथ साथ ये भी कह रहा है सकी कि चटनी में ज्यादा प्रयोग करा जाता है। तो वैसे भी जब
1: चटनी मौसम में ज्यादा प्रयोग करा जाते हैं और शरबत में भी
0: नहीं हम ये तो नहीं बता रहे।
1: अरे तो और कौन कौन चीज में प्रयोग करा जाते हैं ये तो बताओ।
0: नाम ना बताए दे पे हम अब इतना दिमाग कहे लगाओ इतनी देर के बाद गीत संगीत सुने हो अब फिर दिमाग लगाओ
1: तो अब दिमाग काम कर रहा है ना। हाँ। वजह से दिमाग लगा
0: तो आप श्रोता आप जानो एक तरफ हमसे अब ठंडाई के बारे में बतवा थी फिर हमसे कहती शरबत में भी अब बताओ आप सोचो अब शरबत और ठंडाई का अलग अलग ले गई है। हाँ तो आप कहे चाहते तो श्रोता हम बताए जाए थे की हम लोग पुदीना के बारे में बात
1: कर सखी सोचा तो की कौन सखी बताए न दे तो उससे पहले हम ही न बताई दी।
0: ठीक है जब पहले बतवा थी कि हम मतलब शरबत ठंडाई के बारे में
1: दिमाग
0: चटनी कह रहे हैं लेकिन आप फिर ठंडाई का छोड़ के फिर हमसे कहती हो शरबत में। ठीक है तो ठंडाई आप बनाए के लाए शरबत हम बनाए के लिए पे। लेकिन अगर पुदीना के पत्ती में प्रयोग करा जाते अगर पीस के तो उसके स्वाद भी दूसर हो जाते हैं और साथ ही साथ पुदीना के पत्ती के रस पिए से हम लोग के या जो हम लोग शरीर में लिया जाता है तो उससे फायदाजनक रहा था गर्मी के तासीर से बचावत है।
1: हाँ जैसे हाजमा भी ठीक रहा थे है ना कब्ज भी ना होए देते
0: तो ऐसे चटनी की बात कर रहे हैं ना। चटनी के बात मरा अंबिया के चटनी में प्राय पुदीना तो डाला
1: हाँ,
0: जाता
1: तो
0: है
1: ना? वही बात तो सखी कही थे मतलब उमा भी डालो तो फायदा तो रहबे करिए ना चटनी में।
0: तो आप अंबियो के तो नाम ना लायो अब बगिया में तो इसे तब आम पाके लग है
1: अच्छा।
0: लेकिन आप अंबिया जैसे आम कच्चा आम के बातें ना लायो खाली हम चटनी कहे तो आप चाट ले हो
1: सुनो ना। अच्छा ठीक है अब थोड़ा आंधी होंधी आवे दो जब अंबिया गिरी
0: नहीं तो जरूरी नहीं अब आपके चटनी खातिर हम आंधी आवे सहारा देखी।
1: अरे तो मौसम कब बदल जाए मतलब
0: पता नहीं है
1: पता नहीं है
0: तो आवे दो कहा जैसे लगता है आपका खबर भवा कर
1: ठीक है ना आंधी आई मगर फिर भी तोड़ के लेके बस
0: नहीं आंधी आओ तो आपको फोन ऑन करा थे का आंधी की हम आई थे
1: पता चल जाते सबका पता हो जाते मौसम देख के
0: तो फिर बताओ आप मौसम देख के आंधी कब
1: आ रहा है। तो मौसम बनाया रहा है ना अब लागत रहा कि बारिश हुई है पानी बरसी लेकिन नहीं हुआ अब कहा नहीं है ये तो कुदरती मौसम
0: बात घुमाए लिंजा बात घुमावे में तो अब हमारे लोगन के काम ही रही गवा है एक दूसरे के कोई के सहा नहीं जाते है नहीं
1: हम किसी से कम नहीं
0: हाँ बस कम नहीं है। लेकिन का बात है कि जैसे हम लोग अपने शरीर संबंधी जो हम लोग खान पीन के ध्यान रखा जाता है जो शरीर में परेशानी होते तो घरेलू नुस्खा ऐसा चीज़ है कि घरेलू नुस्खा से हम लोग अपने शरीर का कोई भी रोग का अपने घरेलू नुस्खा के साथ बचा सका जाता है। और बचा सका जाता है क्या होता है कि जो घातक रोग होते हैं जो ज़्यादा इमरजेंसी हो जाते हैं उनके लिए तो हम लोग डॉक्टर के संपर्क में जावा जाते हैं चेक भी करावे परी। लेकिन जो नॉर्मली होते हैं कि हाँ शरीर में दर्द है या हल्का फुल्का बुखार आएगा सर्दी आएगा वह मूड पिरात है और ऐसे कई चीज़ें हैं सिम्टम जैसे गैस्ट्रिक की समस्या है नहीं बैठे में खाना के भूख नहीं लागत है तो ये सब चीज़ें से डकार ज़्यादा होता है ऐसे चीज़ें में हम लोग अपने घरेलू नुस्खा से भी का हम लोग समाधान कर सका जाता
1: है हाँ।
0: तो ऐसे ही में पुदीना भी है ना सखी कि पुदीना से हम लोग घरेलू नुस्खा में पुदीना भी एक रामबाण दवाई के रूप में प्रयोग होता है एक आयुर्वेद में भी का गिना जाता है कि हम लोग हर्बल का जो बात कराना जाता है तो हर्बल में जैसे नीम के पत्ता भवा पुदीना भवा ऐसे हम लोग कागती जो नींबू है शहद है ये सब हम लोग आयुर्वेद के दवाई में परत है। तो फिलहाल जो है हम लोग बातचीत कर रहे थे पुदीना से क्या का फायदा, तो पुदीना के तो आजकल आप लोग जाना जाते हो कि जहाँ भी गन्ना के शरबत पिया जा जाता रस उमा पुदीना के प्रयोग रहा था है ना। अब मैं कह रहा था कि ये सदाबहार रहा था कि ये मौसम में पुदीना के पत्ती और नींबू डाल के शरबत पिया जाता है, तो गन्ना के का होता तासीर ठंड रहा था, गन्ना के रस इस ज़्यादा प्रयोग होते हैं लेकिन शरीर के खातिर भी एकदम फायदाजनक होते
1: हैं। हाँ हाँ, इसे खाना पचावे में भी मदद करते हैं है ना।
0: हाँ, और सबसे ज़्यादा तो अच्छा गन्ना के रस का प्रयोग का कहता नहीं है पी लिया जंडिस रोग में प्रयोग होते कि जंडिस रोग में प्राय गन्ना के जो रस रहा थे इका पिए से फायदाजनक रहा थे जंडिस का कम करत है। लेकिन साथ ही साथ सखियों में एक और बात है, एक तो हम लोग नाम लीन जाते हैं गन्ना के शरबत का है नहीं, लेकिन जो उमा बर्फ़ के प्रयोग जो ज़्यादा करा जाते हैं उससे का हो सकता है, बर्फ आदमी ठंडा ठंडा पिए मन करत है। अब उसे नॉर्मल हम लोग अगर गन्ना के रस का पेड़ के पिया जाता है तो वो तो गर्म रहा थे, लेकिन आदमी उसका बर्फ में डाल के ठंडा ठंडा
1: पिए ठंडा मारे
0: है नहीं। हाँ, लेकिन ज़्यादा जैसे हम लोग गर्मी से जावा जाते बाजार में चला करा जाते गर्म तो रहते हैं बाहर तासीर, वही में हम लोग ज़्यादा आइस डाल के यानी बर्फ़ डाल के जो शरबत पिया जाते उससे हम लोग का सर्दी भी लग सकता है। कैसे गन्ना के रस रहा थे ऊपर से उमा बर्फ़ पड़ा रहा थे, जी के शरीर में मतलब क्षमता है अभी तो उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन जी के समस्या रहा थे शरीर में कि थोड़ा से गर्म से सर्दी हो जाए थोड़ा ठंडा से सर्दी हो जाए ऐसे शरीर का नुकसान कही जाते
1: हैं। हाँ, ठंडा गर्म की वजह से हो जाते इसे नुकसान करते हैं। तो ठीक है सखी, बातचीत तो करते रहा जाइए।
0: हाँ, करा जाइए।
1: हाँ, अब चला जाए
0: लेकिन करा जाए लेकिन 3 बजे तक करा जाए।
1: हाँ, 3 बजे तक करा जाइए, अभी व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए।
0: ठीक है, चला
1: टाइम हो चुका है कि वजह से
0: ठीक है चला जाए व्यापारी विश्राम की तरफ।
1: ठीक है।
2: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
3: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
2: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
3: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठीक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
2: अनकल सेवाहरू,
3: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।

0: आज यहाँ कहाँ भटकत हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
0: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेयर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेयर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 98487916।
2: दैनिक रु 197 में रु 50 लाख को बीमा तीरे को संपूर्ण प्रीमियम फिरता। सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी।

0: बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार। पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बियर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
0: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
3: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
4: सुनो बहिनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
6: अम्मा के दवाई करावे के, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
7: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
6: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
7: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथेन NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
6: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
7: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा

0: मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्राह्मी लोगन के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206697 9858023697 और 9804483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: Toilet Bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: हरेक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, सुरक्षित वातावरणमा सिकुन् र उज्जवल भविष्य निर्माण गरून्।
3: त्यही सपना साकार पार्दै आएको छ नेपालगञ्ज 18 बाँकेमा अवस्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्प्रिङडेल एकाडेमीले।
2: आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट सिकाइ वातावरण, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप र अनुशासित शैक्षिक संस्कार स्प्रिङडेल एकाडेमीको विशेषता हो।
3: ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डले विद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ पढाइसँगै व्यवहारिक ज्ञान र आत्मविश्वास पनि सिक्न पाइन्छ।
2: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 विज्ञान व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा भर्ना खुला गरिएको छ।
3: सिट सीमित भएकाले आजै आफ्नो भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र उज्जवल भविष्यको भरोसा स्प्रिङडेल एकाडेमी।
2: ठेगाना नेपालगञ्ज 18 बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 98582973।
4: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11, बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
6: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: के

0: सखी हाँ लिख भयो गजल
1: गजल लिख चुके हैं और सुनाए भी चुके हैं आप शायद सुने
0: नहीं देख के गजल लिखत रही हो
1: आपे का
0: हमने तरफ तो नहीं देखत रही हूँ आप तो देखत रही हो मोबाइल के तरफ अपने काम के तरफ
1: मन के आंखी से देखित रहे इनका
0: मन के आंखी से
1: मतलब एक महसूस करे वाला
0: मन में आंखी एक आंखी रहे कि दो आंखी रहे
1: अभी तो हम नहीं जानी थे लेकिन हाँ मतलब आत्मा से देखित रहे अब कह दो आत्मा
0: आत्मा आंखी होते
1: कहा नहीं होते
0: होते
1: हाँ हम वही से देखे
0: हम तो सुने जन इंसान के दो आंखी होते
1: एक जिसे इंसान की आंखी होते एक दिखाए वाला आंखी होते हैं और एक जो अंदर जो रहा थे ना वो छुपा आंखी रहा थे मतलब कोई ना जान पावत है
0: खाली आप खाली जान पाए
1: हाँ हम इन जान पाए और जो सामने वाला है वो महसूस कर सकत है अब पहली माँ उलझ गई ना
0: नहीं मुलझे नहीं ना सोच में छेड़बे तो फिर और लंबा चला जाए
1: तो वही तो
0: अब बात खत्म सोचे थे बात खत्म है कही
1: हाँ, बात
0: अब मैं दूसरा कोई नहीं महसूस करी समझे सखी खाली महसूस करी ने
1: और महसूस आपको का भी करनी चाहिए आपका देख
0: दो आंखी ना इनके चार आंखी है अब
1: वो सबके रहत है
0: आत्मा में भी है दो आंखी
1: सबके रहत है महसूस करे वाला
0: अब कह रहे खाली हम जान पाए हैं और कोई नहीं जान
1: वो तो हम जान पाए हैं लेकिन जो सामने वाला रही है ना वो भी जान पाई है जैसे कि आप अब आप पता नहीं कैसे नहीं महसूस करो
0: लो हमरे ऊपर प्रश्न खड़ा हाँ। ठीक है तो चलिए हम पुदीना के तरफ और पुदीना के चटनी खाइबे तो दिमाग थोड़ा तेज हो जाए
1: हाँ,
0: ठंडाई पिएबे दिमाग आपके दिमाग तरोताजा हो जाए
1: हमरे
0: हाँ तरोताजा हो जाए कैसे आप गर्मी
1: से घुमाए फिराए के हमरे ऊपर
0: नहीं तो सामने आप हो तो फिर कहाँ जाए और घुमाए फिराए के पूरा घुमाए फिराए के फिर वापस आए जाते तो अब पुदीना के बारे में तो हम लोग कहा कर रहा है कि गन्ना के रस में पुदीना के शरबत पिया जाते है ने ऐसे पुदीना के और भी आयुर्वेदिक दवाई भी है सखी कि जैसे हम लोग के पुदीना के पानी का पुदीना का पानी में उबाल लिन जाए नी जैसे हाँ। काढ़ा बनावा जाते है ऐसे पुदीना के पत्ते के भी काढ़ा बनाए के अगर पिया जाए तो जो हम लोग के शरीर के अंदरूनी बुखार रहा थे होत नहीं है कभी कभी एक ऐसी मौसम की वजह से बुखार हो जाते है हड्डी में दर्द होते है ऐसे बुखार का ये दूर करत है और जो शरीर में
1: अच्छा, मतलब हरा पुदीना के काढ़ा बनाए के पियो
0: हाँ पानी में उबाल के इमें हल्का जैसे आप चाय पिया जाते है काढ़ा पिया जाते है वही तना ही का बनाए के आप तनाई का पी सका जाता है जिसके कारण से बुखार तो ठीक करत है साथ साथ जो शरीर में निर्बलता रहत नहीं है कमजोरीपन उलझनपन ऐसा चीज भी
1: कमजोरीपन आलसपन ये सब चीज का दूर
0: जैसे बुखार रहा था ना शरीर थका थका लागे लागत है कोई काम में मन नहीं लागत है तो ऐसे चीज में ही हम लोग का तरोताजा कर देते
1: हैं
0: एनर्जी लावत है ऐसे है धनिया सौंफ जीरा है नी इस सब का पानी में भिगो दिन जाए अब भिगोए के बाद आपके जैसे एक गिलास पानी या डेढ़ गिलास पानी के मात्रा में मिलाई के पानी का फिर छान लिया जाए या पुदीना के पत्ती का पीस के बनाई के और जैसे आप चीनी है या का है ओके शरबत ठंडाई बनाई के पी सका जाता है तो गर्मी में तासीर जैसे आप लोग जाना जाते हैं कि पुदीना तो हम लोगों के शरीर के लिए फायदाजनक हो इनका और धनिया भी हम लोगों के शरीर के खातिर बहुत फायदाजनक होते है और उसके साथ साथ सौंफ भी फायदाजनक होते है सौंफ के तासीर भी ठंडा कहा जाता है लेकिन हम लोगों के शरीर के जो का फैट रहत नहीं है शरीर के जो चर्बी रहत है उसका घटाव में भी मदद करत है साथ धनिया भी
1: सौंफ
0: है हाँ धनिया भी शरीर के जो वेट रहत है वजन रहत है उसका घटाव में मदद करत है और साथ साथ कई अन्य शरीरन के रोगन का धनिया के पानी फायदाजनक करत है और सौंफ के पानी भी फायदाजनक करत है अब उमा प्लस का होगा पुदीना के पत्ती है नी वो का पीस के अगर मिलाए के हम लोग स्वाद अनुसार जैसे चीनी भवा या फिर उमा आप दही भी मिला सका जाता है तो ये का मिक्स करके हम लोग ठंडाई कहा जाता है शरबत बनाया जाता है उसका पिए से शरीर में तरोताजा हो जाता है तरोताजा माने जैसे हमने सखी का तरोताजा करे कही थे ऐसे तरोताजा एकदम फ्रेश ठंडा ठंडा अपने शरीर का कूल हो जावा जाता है नी
1: हाँ,
0: तो हाँ कहीं नहीं देखा जाए
1: अरे सखी आप सब सब फार्मूला हमरे ऊपर आजमाओ
0: आप ध्यान से सुनत रहे तो आप हाँ भी कहे झूठ ना बोलो हाँ कहे हो
1: हाँ एक दुई मेर के हाँ होते का
0: अब फिर वो दुई मेर के होता अब भाई आंखी दुई मेर के रहा अभी यू हाँ दुई मेर के है आप तो, एक मेर के हो कि दुई मेर के हो
1: हम
0: हाँ
1: अब जैसा सोच
0: अब हो गया अब हमारा दिमाग का तरोताजा करे कहते हम जैसे ठंडे पिए ठीक है आपो कतरे नहीं लिए आए थे
1: अच्छा
0: दुई है ना तो दुई काम करे पड़ा ठंडाई हम बनाए के लाए थे तब तक पिया जाए तब तक आपको सुनाए दो सकी
1: लो अच्छा ठीक है सखी और
0: तो आप कहूं आपो दुई तीन ठो निकरी हो तो हमार दिमाग चकराई से
1: लो ठीक है सखी अब इतनी सुनाए थे
0: अबे सुनाओ तो बस ठीक है अबे सुनाओ जा ठीक
1: थोड़ा सा चला जाए व्यापारी विश्राम के तरफ के बाद
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ शर्माजीले श्री एफई 550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील
3: दैनिक रु 197 रु 50,00,000 बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: ठंडा ही तो पिया गया है ना।
1: हाँ पानी भी है, आप पानी पिए चाह रहे तो पानी भी लाए हैं।
0: अरे अब स्वाद बिगड़ जाते का, स्वाद खत्म हो जी, अब अभी ठंडाई के स्वाद है।
1: अच्छा
0: अब पानी पीबे तो स्वाद अरे बदल जाएगा।
1: अरे वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ ये न करा जाए कि पूरा दिन भर स्वाद के चक्कर में पानी
0: ना पिया पानी जाए। पीबे थोड़ा अब थोड़ी देर के बाद
1: ठीक है। तो चला जाए, हम लोग जानकारी और लीन जाए नहीं कि जैसे पुदीना से का का फायदा होता है। वैसे गर्म के मौसम में हम लोग गर्मी में जैसे बहुत चीजें बातचीत करा जाते है कि पुदीना से का का फायदा है। ऐसे पुदीना से हम लोग के शरीर में का होते है ना, सकी कोई कोई के जो पाँव के नीचे तलुआ रहा थे वो में जलन होए लागत है नहीं, रहस नहीं होते जैसे
0: गर्म के महीना में
1: जलन लागत है। तो ऐसे मौसम में क्या करा जाता है कि जब पैर में जलन होते है तो उसमें पुदीना के पत्ती का पीस के 15-20 मिनट पाँव में लगा लीन जाए, तो इससे बाद में धो लीन जाए तो इससे पाँव के जो जलन होते है वो ठीक हो जाते है, राहत मिला,
0: राहत मिला था, ठंडा राहत है।
1: हाँ और साथ ही साथ पुदीना के पत्ती का पीस के जैसे शहद के साथ मिला के दिन में 2-3 बार अगर चाटा जाए, जैसे पुदीना के पत्ती पीसा जाए लेप तना है नहीं, चटनी तना। अब चटनी माने वो चटनी ना होए, फिर आप ना सोचो कि हम फिर चटनी का नाम ले,
0: नहीं नहीं वो ना सोच पे।
1: हाँ
0: कहे कि माँ अम्बिया मिले ना रही चटनी का सोची।
1: हाँ तो वैसे चटनी के साथ साथ अब वो चटनी सादा पुदीना के पत्ती का पीस के फिर शहद में मिलाए के है नहीं, दिन में 2-3 बार अगर एक चाटा जाए तो चाटे से का होते कि का होते
0: ठंडा रहा थे
1: का ठंडा रहा थे,
0: अरे मतलब अच्छा रहा थे और का
1: जैसे का कहा जाता है अतिसार है नी, अतिसार जैसे मान लो दस्तावा पेट में गड़बड़ी हो जाते
0: है,
1: हाइजा के नाम भी दिया जाता है, पेचिस भी हो जाते है, तो जो पेट में अपच रहा थे तो वो जगह में ये हम लोग का पेट का राहत देते, ठंडक देते और साथ ही पेट का ठीक भी कहते।
0: वही वही बात हम कहे,
1: वही बात है,
0: वही बात कही चैतरन सखी, लेकिन
1: बस मुँह में आवा ना,
0: पेट में आएगा,
1: मुँह में आएगा।
0: अब पेट में इतना ठंडक हो गया है कि बात का भी अभी निकाले
1: बड़ी आफत है। अब ठंडक ना रहा है तो आप पत्राम ले सकी का, अब पेट में ठंडक आएगा है तो वो में आफत हुई
0: नहीं, आप आराम से निकली का।
1: अब बात ये है ना सकी कि मौसम ऐसे रहते हैं कि आलस आ जाते है का थोड़ा
0: आलस। अब देखो ना पियाई दिए हो ठंडी है, बस मन करते आराम करी,
1: नहीं आराम ना करो।
0: अब
1: आप आराम कर दो तो फिर हमारे लोग के कार्यक्रम भी इधर सोई जाए, आराम करने लगे, यही मारे आराम ना करे।
0: नहीं तो कोई बात नहीं,
1: गलती कह दिया जो हम आपका ठंडाई पिया दिया, अभी थोड़ी देर बाद पिया चाहत रहा।
0: नहीं तो ठीक, हम थोड़ा भी जो है थामे रही बे
1: थामे रहो,
0: और इसके बाद जो जब गीत बजे थोड़ा आराम कर लिया जाए।
1: हाँ तो ऐसे हम लोग के जो जैसे कहा नहीं, महिलाएं का सबसे ज्यादा शौक का होते कि चेहरा के मेकअप के ऊपर सोख रहा था नहीं, गर्मी महीना में बहुत मुहासा दाना निकले लागत है और फिर पसीना पसीना रहा थे, तो ऐसे मौसम में भी हम लोग जैसे पुदीना का पीस के एक लेप का चेहरा में 10-15 मिनट लगावा जाए,
0: चेहरा में
1: लगावा जाए तो उसके बाद पानी से धोए सका जाते है, तो पानी इससे क्या होता है चेहरा में चमक रहा था, जो पसीना इन्फेक्शन रहा था धूलन से छोटे छोटे जो दाना रहा थे वही का ठीक कर देते है, तासीर भी एकदम चेहरा का तरोताजा ठंडा करत है।
0: अच्छा सखी, जैसे कि ये गर्मी के महीना में यहाँ पसीना तो आवत है नहीं, और लेकिन सर में भी बहुत पसीना आवत है, और सर में या पसीना आवे के बाद जो है छोटे छोटे जो राहत नहीं है घमौरा, जैसे कुछ लोगों के निकले लगते है घमौरा पसीना की वजह से, अंधौरी कहते जी का वो भी वो निकले लगते है, और दूसरी बात जैसे छोटे छोटे दाना बच्चे लोगन का ज्यादा दिखाई पड़ा था बच्चे लोगन में, यहाँ क्या कि बच्चे लोग खेला करे थे बाहर, अब उनका कहाँ तक समझाओ है ना।
1: हाँ, बैठा भी ना गर्मी में खेला करा थे, बाहर ना जाओ तो बच्चे नदाई के बाहर जाते हैं
0: फिर प्यास लगा थे पानी पी लेते हैं, तो ई के वजह से उनके सर पर भी असर पड़ा थे, तो ये दाना जो छोटे छोटे निकले थे तो का उनमें भी फायदा हो सकते है
1: के खाते तो सबसे बढ़िया नीम के पत्ता रहा थे, नीम के पत्ती का पीस के ओके लेप का हम लोग अगर बाल में धोबे से पहले 10-15 मिनट या आधा घंटा लगावा जाए तो ठंडक भी देते, लेकिन शरीर के तासीर अनुसार अगर जी का नुकसान करत है, जी का जल्दी सर्दी लागत है उसका नुकसान कह सकत है, जल्दी ठंडी लाग सकत है सर्दी हो सकत है, लेकिन जी के तासीर उमें नए रहते शरीर में वो का लेप लगावे तो बाल में ठंडक और साथ ही जितने भी इन्फेक्शन रहते हैं जैसे रूसी हवा रूसी के साथ छोट छोट जो दाना रहते हैं, और जो आप अंधौरी कहा गया है तो अंधौरी तो बालन से ज़्यादा तो हम लोग के चेहरा में हाथ पैरन में जहाँ पसीना ज़्यादा रुकत है ऐसे जगह में अंदौरी निकलत है तो उके लेप लगाए से और नीम के पत्ती अगर सवेरे बासी मुँह दो तीन ठो पत्ती खावा जाए तो शरीर के और भी जो सो हम लोग हाँ। के खून का फिल्टर कर देते हैं साफ कर देते हैं और अंदौरी दानन से हम लोग का
0: पेट
1: फायदा
0: भी रहा थे और सब समस्या पेट से भी रहा थे।
1: लेकिन पुदीना के पत्ती ये एक फायदा रहा थे सकी हाँ। कि जैसे पुदीना के पत्ती का पीस के अगर बाल में लगावा जाता है तो ये मौसम में जब कभो कभो पानी बरस जाता है ऊपर से फिर तुरंत गर्म हो लागत है तो पसीना जो बाल में आवत नहीं है ये कारण से क्या होता है जुआ पड़ जाता है बालन मालिक जुआ के समस्या हो जाते है और दाना तो आप कहबे करा कर है खुजलाहट हो जाते है तो इस समय में जब इका लगावा जाए तो जो आप शैम्पू जोन शैम्पू से बाल धोवा जाते है उस शैम्पू में आप इका थोड़ा पुदीना पत्ती पीस के वही शैम्पू में मिला लीन जाए अच्छा। फिर लगाए के बाल में 10-15 मिनट ना धो
0: छोड़ दिया जाए ना मतलब ऐसा रहा दिया जाए बाद में
1: हाँ जब 15-20 मिनट के बाद आप पानी से धो सका जाते तो जो बाल में जुआ पड़ जाते वो जुआ मर जाते हैं।
0: अच्छा
1: तो ये बच्चन के लिए भी ज्यादातर समस्या रहा थे बड़न के लिए भी समस्या रहा थे और साथ ही साथ ब्यूटी में हम लोगों की सुंदरता में पुदीना के पत्ती भी काम लाग ऊपर से गर्मी मौसम में जो हम लोग ठंडा ही पिया जाता है अथवा शरबत या चाय जो अभी कहा गया चाय गन्ना के रस के साथ है और फिर अम्बिया के चटनी के साथ है तो ये कि पुदीना के जो तासीर हम लोग के शरीर में इके सेवन करे के चाहिए सेवन करे से शरीर के जो तापक्रम राहत है उका ही कम करत है और हम लोगों का शरीर अंदर से ही ठंडक प्रदान करता है तो का करे के चाहिए आज से पुदीना
0: हाँ तो सखी बहुत अच्छा आप इतना बढ़िया बतावा गा हाँ। पुदीना हर चीज में फायदा होते है ना हर एक चीज में फायदा होते बहुत अच्छा बतावा अब ठीक है आपसे हम प्रयोग में लेबे
1: ठीक
0: का है ना ठीक
1: ठीक है तो प्रश्न हमसे आपका करता आप कहो हम प्रयोग में लेंगे
0: तो और साथ ही आप लोग भी
1: देखा जाए श्रोता अगर हम ज्यादा बोलित नहीं है तो इनके दिमाग सोचा थी कि सखी हमसे इमेल नहीं
0: नहीं आपके
1: और ज्यादा पूछे लगे थे तो कहते घूम फिरा के हमरे थिराओ थी
0: अब आपके जो है मतलब देखे के अंदाज से हमका थोड़ा अजीब मेरे को लगा
1: आज हमारे सखी कुछ ज्यादा इनके आंखी चार आंखी हुई गई के मारे हमको कुछ ज्यादा देख
0: अरे आप इनमें के ठंडाई पिया दिए हो ना कि हमारा सही बात
1: लेकिन हम आज दिन भर सोचबे कि आंखी दुई आंखी आत्मा में कितनी रहा थी उनका हम पता लगेबे अंतर आत्मा से है नी लेकिन हाँ, वो तो अंतर आत्मा से देखा जाता है सोचा जाता है आप तो कहे आंख ही रहा थे अंदर
0: सोचा जाते हैं देखा मतलब महसूस करा जाते हैं अच्छा चलो ठीक है सब बात मियां काई बात जाए
1: चला जाए हम लोग गीत संगीत
0: बात करा जाते हैं हां साथी आप लोग भी जो अपने सखी बताई ने हरा पुदीना के जो है इतना अच्छा जानकारी दीन उपाय भी दीन है तो आप लोग अपने जो है लागू करा जाए अपने दिनचर्या में लागू करा जाए अपने बच्चे लोगन के जो है के तरफ भी ध्यान दिया जाए जो हमारे सखी बताई ने कि इसका प्रयोग किया जाए मतलब हर एक चीज में यहां फायदेमंद होते हैं पुदीना और आजकल सब जगह
1: मिला जगह मिलत भी है
0: हर जगह मिलत
1: है केदार है अब कहा जाता है कुआं केदार है तो कुआं तो बहुत मात्रा में कम प्रयोग है ना है ये ना जहां है भी तो ऊपर से आदमी मुंद ही ने ढक्कन कहा से काती में सफा पानी नहीं रहा थे लेकिन अब नल के प्रयोग होते हैं नल के साथ साथ पानी टंकी के भी प्रयोग होते है फिर भी इका पानी के जगह में जैसे बारी है आगे खेत है हर लोग इका बोए रहा थे तो पुदीना के पत्ती इस ऐति के उपजन भी ज्यादा रहा था
0: उपजनी ज्यादा रहा थे तो सखी ठीक है अभी हम लोग चलो व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाते हैं
1: चला जाए
0: ठीक है बात बात बत के तो होते रहिए ठीक है
1: ठीक
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 98580-3479 र 98480-21380
4: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है
5: शरीर में यहाँ न खजवाए छुए से जान न मिले लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते अस लक्षण अपनक या तो दूसरे के में है दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में है जाए के जांच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में है कुष्ठ रोग के दवाई निशुल्क मिलत है।
4: समय में है उपचार यानी दवाई की है से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में है नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
5: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
6: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दै छ थायराइड को समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
7: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
6: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
7: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
6: कस्तो खबर?
7: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही MD इन्टर्नल मेडिसिन TU एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
6: ए साँच्चै?
7: अझ सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
6: ए त्यो त झन् राम्रो
7: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य MBBS MD KU IVF स्पेशलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MS KU वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
6: वाह अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
7: अझै अरू सेवाहरू पनि छन् दैनिक ओपिडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
6: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
7: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
6: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर BP चोक नेपालगंज फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
7: अब चिन्ता होइन समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: California. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए, अच्छा माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा कहीं आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुरखेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697, 9858023697 और 9914083697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: भर्ना खुल्यो। युथ भिजन इंग्लिश मीडियम स्कूलमा कक्षा नर्सरी देखि कक्षा 9 सम्म नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: स्मार्ट बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, गुरुकुल सम्बन्धीको समेत अध्ययन हुने, सबै कक्षामा विषयगत शिक्षक भएको र अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिइने, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा अभ्यास। युथ भिजन इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल, नेपालगञ्ज 4, प्रगति टोल, बाँके।
3: प्रधान अध्यापक भूपाल गिरी। सम्पर्क नम्बर 9580 29735।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: बस एक बात हमार मान लेती, ई चुरकुट पहनल छोड़ के मस्त लुग्गा पहन के घूंघट निकाल के हमरे सामने आ जाए तो साला हमार करेजा जुड़ा जाए।

0: सखी देखो ना, प्रोग्राम के भी अंत में पहुंच गवागा हम लोग, और टाइम के कुछ पते भी नहीं चला है ना, बात करते
1: पता करत। तो नहीं चला थे, और पता कसके चले, जब से आप सामने बैठी हो तो हमका पता ही ना चली, कैसे अब अभी संध्या थोड़े भवा है।
0: अच्छा,
1: तो ठीक है, तब याद करा जी फिर कि हाँ चांद निकले वाला है कि नहीं निकले वाला है।
0: अच्छा सर, ठीक है, अगले हफ्ता में यहाँ ऐसा चीज लेके हुए कि आप सामने देखो तो पता चल जाए। सोचो का हुई,
1: अब का पता का लेके आई हो, आज से बता ही दे रही हो। अच्छा, तो फिर बताया, आप ही बताया था, तो हम कहे दिमाग तक
0: नहीं, जिसे पता नहीं चलत है, तो पता नहीं चले की खातिर तो भाई अब
1: घड़ी लेके आई हो, तो घड़ी तो हाथे में पहना गया, आप भी पहने हो,
0: अब ये तो अब जिसे आपको देखा जाए है ना।
1: अच्छा, आंखें कमजोर हो सकते हैं।
0: अरे आप तो बहुत उपान ना की दिन का, हम लोग देख ऐसे देखियो और आपका पता करे खातिर सिर्फ ऐसे सामने रख दे,
1: इतना बड़ा घड़ी लाके आगे रख दे,
0: पता चल जाए कि समय हो चुका है।
1: कोई बात नहीं है, अब हम लोग के समय भी आवे वाला है, जाए विदाई लेके समय आएगा है, लेकिन उनके पहले जो हम लोग चर्चा किए जाते हैं श्रोता की, आप लोग जाना जाता है आज पुदीना के बारे में बातचीत करेगा, तो पुदीना ऐसे हम के हर्बल दवाई के रूप में भी परत है, और ये हम लोग आयुर्वेदिक दवाई में जैसे घर के नुस्खा कहा जाते है, घर के नुस्खा में बहुत सी चीजें इमा हम लोग प्रयोग करा जाते है, तो सबसे ज्यादा ई मौसम में हम लोग का रोग लगे वाला जैसे कहा जाता है हैजा, उल्टी, दस्त, पेट के समस्या, गर्मी के कारण से ये समस्या ज्यादा दिखाई पड़त है नहीं सकी, तो ये समय में हम लोग पुदीना के प्रयोग से अपने आप का बचा सका जाता है। कोई भी चीज में आप प्रयोग करके उसके सेवन कर सका जाता है, जैसे कि सबसे ज्यादा तो हम लोग पानी के सेवन करा जाते हैं, तो शरबत के सेवन कैसे कहा जाते है, जो आप गन्ना के रस पिया जाते हैं वहाँ पुदीना के, तो बहुत जना का पसंद रहा था, बहुत जना का नहीं पसंद रहा था, लेकिन एक दवाई के रूप में भी एक जरूर दिन में ना हो तो थोड़ा सा स्वाद एक बार जरूर लिया जाए।
0: हाँ, और आम के चटनी में भी प्रयोग कर सका जाते
1: है। हाँ, चटनी तो आज हम लोग भूलबे ना करा जाए, और आज हमरे सखी जाए के चटनी पीस के रखी है जरूर।
0: हाँ,
1: कैसे हमका आरोप लगाए कि आगे चटनी हो तो चट गई जाए तू,
0: वो तो है ही नहीं, लेकिन अब कार्यक्रम भी खत्म हो चुका है, नहीं तो अब कार्यक्रम यही लेके तो आप चटती हूँ जरूर, वो तो चट कर देती हूँ
1: ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, चटनी ज्यादा खाए से हम लोग का नुकसान भी हो सकता है।
0: अरे तो हरा धनिया नहीं, मतलब वो रही, अरे
1: हरा धनिया के याद आएगा, वो हरा धनिया मिला था लेकिन अभी उसके उपजनी कम रहा था,
0: हम
1: हरे पुदीना।
0: हाँ, हरा पुदीना,
1: हाँ, तो गाना गाते गाना गाते पुदीना रे तुमका चटनी बनेबे,
0: हम
1: खाइबे सखी का ना खाइबे, कहके ही कहे हम लोग गाना गावा जाए।
0: अरे सखी, हम कहन के अपने सखी का खाइबे और आप कहो कि हम सखी का ना खाइबे।
1: अच्छा, कह रहे हो मारे की आपके चार राखी है, वो हमारे दिमाग में घूम रहा है, वो चार राखी जब तक पता ना कर ले।
0: अच्छा, तो ठीक है, आज मतलब हफ्ता भर में ही आप पता कर लियो। ठीक है,
1: ठीक है, तो आप लोग सुना का है पुदीना के बारे में, तो सबसे ज्यादा हैजा माँ पुदीना के प्रयोग एकदम फायदा जनक करत है, प्याज के रस माँ नींबू के रस का बराबर मिलाई के, जैसे कहा जाए पुदीना प्याज और नींबू के रस तीन ठो का बराबर मात्रा में मिलाई के एक पानी माँ मिलाई के पिए से हम लोग के उल्टी, दस्त और जो पेट के समस्या होता है इमा ही फायदा करत है। और हम लोग पई के साथ साथ जैसे सौंफ के प्रयोग करेगा वो भी फायदाजनक होता है, धनिया के पानी भी फायदाजनक होते हैं, धनिया हरे धनिया कम मिलते है, अगर हरे धनिया का भी सलाद में ज्यादा खावा जाए तो वो भी हम लोग के फायदाजनक रहा है। और पुदीना, हाँ पुदीना और सौंठ का बराबर मिलाई के एक हम लोग चटनी तना अगर चाटा जाए तो हम लोग के सर्दी और बुखार में फायदाजनक करत है। ठीक है सखी,
0: हाँ सखी,
1: तो ऐसे हम लोग जानकारी पुदीना के बारे में बहुत है,
0: बहुत है,
1: लेकिन कोई भी सीजन के जो आयुर्वेदिक भीतर जो हम लोग के हर्बल चीजें हैं जो हम लोग खान पीन में प्रयोग करा जाते हैं जी के मौसम में उपजनी ज्यादा दिखाई ला थे उसके व्याख्या तो जितने करो उतने ही खत्म न हो।
0: हाँ, तो सखी अब व्याख्या बंद कर दो, कहे की व्याख्या खत्म न हुई है लेकिन समय खत्म हुईगा है,
1: समय खत्म हुई, कोई बात नहीं है, तो समय खत्म अगर सोता आप लोग भी जान गवा का हुई की अब हम लोग विदाई ले समय आए गवा है, 3 बजे तक आप लोग के हम लोग साथ में रहे थे, तो सबसे पहले हमारे श्रोता सखी लोगन का आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो 1 बजे से 3 बजे तक हम लोग के साथ दिया गा, और साथ ही ये कार्यक्रम सखी ये तो बता दिया जाए कि जो लाइव में अभी नहीं सुन पावागा एक फिर से आप लोग ये कार्यक्रम सुन सका जाते।
0: हाँ, साथ ही आप लोग ये प्रोग्राम का सुन सका जाते, हम लोगन के जो फेसबुक आईडी है FM के कृषार FM के, इमा ये प्रोग्राम पोस्ट होते और इमा आप लोग सुन सका जाते,
1: और साथ ही साथ

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: ना
1: विश्व थाइराइड दिवस को उपलक्ष्य में वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राही द्वारा थाइराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा होने गई जानकारी कराइन्छ।
0: हजुर, थाइराइड संबंधी जांच तथा परामर्श विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500 मा।
1: डाक्टर अल्ताबन राही, MD इंटरनल मेडिसिन TU एंडोक्राइनोलॉजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, NMC नंबर 11504।
0: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, बीपी चोक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 081531860, 081531861 र मोबाइल नंबर 98584461। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, बीपी चोक, नेपालगंज में आज नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। संपूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500 मा लिन नभुल्नुहोला।

0: सूचना सूचना सूचना स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
1: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राही द्वारा थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
0: हजुर, थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500।
1: डाक्टर अल्ताबन राही, MD इंटरनल मेडिसिन TU, एंडोक्राइनोलॉजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, NMC नंबर 11504।
0: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, BP चोक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 081531860, 081531861 र मोबाइल नंबर 98584861। मिति 2083 Z 23 गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, BP चोक, नेपालगंज में आज नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। संपूर्ण सेवाहरू मात्र 500 मा लिन नभुल्नुहोला।

अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सूचना सूचना सूचना स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
1: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्य में वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्तावन राही द्वारा थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा होने गई जानकारी कराइन्छ।
0: हजुर, थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र रु 500 मा।
1: डाक्टर अल्तावन राही MD इंटरनल मेडिसिन TU एंड्रोक्राइनोलॉजी दिल्ली, वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट NMC नंबर 11504।
0: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली BP चोक नेपालगंज। संपर्क नंबर 081531860 081531861 र मोबाइल नंबर 98584461। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली BP चोक नेपालगंज में आज नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। संपूर्ण सेवाहरू मात्र 500 मा लिन नभुल्नु होला।

0: एफओ मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: खुल्यो
2: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
1: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
2: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्स को सुविधा पनि।
1: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
2: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
3: हाम्रो नाम घन्किन्छ
4: यो कृष्ण सार एफएम
5: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: सर्वदंशक विषयमा ठाहा जो बा याकर विषयमा डान्से बटादिन।
1: डब्लुडब्ल्युएफ नेपालले चाहिँ लामो समय
2: डब्लुडब्ल्युएफ नेपाल नम्मा समस्या तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती लड्यासे पश्चिम कञ्चनपुरसम्म हाम्रो संरक्षित क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्र से बाहिर फे वन्यजन्तु हुकन संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानको काम समुदाय से मिलकर ढ्युर मेरे काम कटिबाटी यहीमा खास कहिक हाम्रो बरा प्रजाति हुकन संरक्षण गर्न कार्यक्रम हुले से फे और ढ्युर कार्यक्रम स्वास्थ्य रूपमा आफ्नो काम गरकना हिसाबले हाम्रो ढ्युर काम कटिबाटी ऊ करबेर उहिले बडा प्रजाति हुकन काम हुइलसे फे और छोटी प्रजाति हुकन फे फाइदा पुग्छन् ऊ वातावरण मजा हुइबेर अब अपना जौन कली रोटरी
1: मिलेर काम गर्न सकिने अवसरहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छन्।
3: सबनम म्याडमलाई मेरो प्रश्न, हाम्रो धार्मिक आस्था अनुसार पनि सर्पको
4: सबनम म्याडम भन मोर प्रश्न, धार्मिक आस्था अनुसार फे सपनक महत्व बाटिन कर्न बाद पुरान कार्यक्रममा फे गर्ली, तर प्राकृतिक रूपमा यी जौन इको सिस्टम पर्यावरणीय चक्र कठिन हाम्रा वहीमा सपनक स्थान कहाँ बा काक्रहिक र महत्वपूर्णबाट एक ठो बाट बासर अपनेक मन्त्रलाई ऊ विषयमा काकैसिन काम कर्ल बा अपनेक दान्से अनुभव सुनादिन।
5: खास गरेर यो सर्पको लागि इको सिस्टममा चाहिँ असाध्यै धेरै म
6: खास गरी सापनको इको सिस्टममा एकदम ठुर महत्व रहल बाटन। काँक्रा कि मुसक प्रजाति वाकर आहारा हुइटस ओ हिहन ऊ खैठा ओ ऊ अपना फे अरू जहनका आहारा बन्ठाई ऊ कारणले यी दोहोरो भूमिका खेल्ती भए उहिले करबेर इको सिस्टममा साप मास्केल कलसी मानव जाति फे मास जाइसक्छ कन्ना बाद यथार्थ हो। इको सिस्टमको बाट ढ्युर बा ऊ बाट बटोइलसी इको सिस्टममा यी महत्व ढ्युर महत्व रख्ठा जेहीले करबेर मानव अस्तित्व यही मजो अरेल बाकी कना आसो काँक्रा कि साप मास जैल कलसी मनै फे मास जही ओहोर्से हिङ्कनक महत्व बाटन। अब अट्रा महत्व हुइलक सापन वन मन्त्रालय कसिक हेर्ती बाकना अपनक प्रश्नमा अबसम्म वन मन्त्रालय सापनका विषयमा छुट्ट कौनो कार्यक्रम निठल हो। जस्तो वन्यजन्तु सम्बन्धी मेरमिरिक तालिम हुइठा ओसिन तालिममा हाम्रो सापनका विषयमा पाँच छ ठो कक्षा ढर्थे। हाम्रो ग्रामीण समाजमा जाखट कल निहुटी तर सबसे पहिला कर्मचारीको क्षमता बढाइटी बाटी काँक्रा कि कर्मचारी हुँक्र थाहा पहिला सेकेल गाउँ समुदायमा वाकर सन्देश जैना हो उद्देश्यले हाम्रो सबसे पहिला कर्मचारी तालिम देना ओर लागल भिटी तर हाम्रो थिए वन मन्त्रालय थिए सर्प विशेषज्ञ निहुट हाम्रो सर्प विशेषज्ञ जे पिएचडी कर्तीबाट सापनका विषयमा या गाउँ घरमा फे कटरापय यी सम्पवा जौन तालिमका लागि हाम्रो प्रयोग गर्थे जौन चाहिँ फिल्डमा लैजाख देखैना अवस्थामा यी सम्पवा कसिन हो यी क्षेत्रमा कसिन कसिन साँप ढ्युर देख पर्थ हाम्रो चाहिँ कसिक ऊ सापन से हाम्रो कसिक बस्न अथवा सम्पहन मही खटरा हुइटा कना महसुस ना गर अथवा हाम्रो बच्ना हो वो ओहिन कसिक बची ना हो कना सिखाइक लाग हाम्रो यी तालिम फे ढर्थे वो आवक परिवेक्षमा हाम्रो काम महसुस गर्ती बाटी कलसे सापन बचाई पर्था कैख वाकर लाग सक्कु प्रदेशमा तालिम ढैख तालिम दिह पर्था कना हाम्रो मानस पटलमा पैसाकल बा तर आभनसम सापनको लाग सरकारका आधिकारिक बजेट किताब रेडबुकमा चाहिँ धर निसेकल हुइटे
4: ओकले संघीय प्रदेश लेभल के कौनो फे बजेटमा परे निसेकल हो।
5: अहिलेसम्म चाहिँ सर्पको कार्यक्रम पर
6: आवश्यक साँप सम्बन्धी कार्यक्रम पर निसेकल हो। विपट ऐना सम्बन्धी बराबर बाट पर्था काँक्रा कि एक त बजेट फे दिन प्रतिदिन कम हुइटी गेल बा नेपाल सरकारका औरो बाट बराबर जिनवार हुकन बचाएक लाग बाघ हुइल हात्ती गैडा हुकन से कसिक बच्ना ओ हुकन कसिक बचैना कना विषयमा पैसा खर्च गर निसेकल हुइटी कलसे साँप छैहामा परल बाकी कह परे काँक्रा कि हाम्रा थिए उह अनुसारको बजेट कम हुइटी गैलक नेपाल सरकारका थिए बजेट कम हो ख वन मन्त्रालयमा बजेट कम रठा उहिले करबेर औरो मन्त्रालय कहबेर वन मन्त्रालय त वातावरण हेर्ना मन्त्रालय हो जहाँ मनिनको सास फेर्नासी लेख मनैया जन्मनासी मुनासम्म सक्कु बाट वातावरण से सम्बन्ध रठा कना बाट थाहा हुइटी हुइटी फे वन मन्त्रालयका आवश्यकता निहो किका कना सुइटा सरकार फे हिमा स्वाच पर्ना हो कना मही हन्न लग्था मही मन्त्रालय बैठक व्यक्तिगत रूपमा महसुस गर्थु अलसे नेपाल सरकार फे यी बाटक महसुस गर पर्था।
0: यहाँ ओकरा डुनु जहन प्रश्न जस्ट अपना ओकरा मेर मेरा कामक सिलसिलामा फिल्ड जैठी भ्रमणमा जैठी उहाँ गैल ब्यालम अपनहुक र का देख्थे उहाँ गैलक ब्यालम देखलक अचम्म लगती चाख लगती कुछुबा बाकलसी सुनादिन ओ खास कै का शशांक जी बदलती गैलक वातावरणले सापनका पारिस्थितिक प्रणाली हन कसिन असर पर्लबा याकर विषयमा जनादिन
1: म चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ नवलपरासी
2: प्रभाव पर्नाले छन् कि अचम्म लागल महिना सापनका कारणले फे मनिनका निर्णय प्रभावका प्रथा कना मही लागल दोस्रोमै उहाँ अगुवा पुराण मनिन फे पुस्नु म असिक असिन सिन बार सुन्नु कि बटुनु त उहाँको कल हाम्रो नारायणी लड्डे किनारमा बाटी उपसी लड्डिया भएको ऐठा हाम्रो यहाँ ऐना बेलासम लड्डिया चाकर बैठा ऊ बहारमा पुखा आइल साँप ठ्याक्क हाम्रो यहाँ टिर लग ठकै कल ऊ कारणले हाम्रो बेल्टमा ढ्युर साँप हुइल भुइट कै खन उहाँको बटुल उहाँ पुराण मनिनक असिन धारणा रहेछ उही होइन इकोलोजिकल्ली साँप कसिक ऐठ कै हेर्नबाट एक ठो हुई तर परम्परागत ज्ञान कठजे उहाँ असिन देख महिना उ बाट बडा अचम्म लागल हाम्रो एरिया काकर असिन भइल कना बाट उहाँको थाहा रहेछ उ बाट मही एकदम चाखलप्टिक लागल
4: ओसिनो कलेसे वहीसे आर्थिकमा फे असर पर्न रहेछ
2: आर्थिक रूपमा प्रभाव पर्न रहेछ ऊ एक ठो बाट होइन दोस्रो बात जलवायु परिवर्तनमा सापनको गतिविधि कसैको असर पठा कलसे काकर कलसे हरपेटो फोना जत्रा फे घसोर लाख निङ्ना टाटो छ्याक अहिलेसे ढ्युर सक्रिय हुन जिनवार भित्र हुकन्ट जलवायु परिवर्तनका सूचक रूपमा लेठी नै हुकनक जुन पारिस्थितिक क्यालेन्डर जुन बाटन ऊ अनुसार हुकनक क्यालेन्डर फरक पट्टि गेल भा कलसे हुइपर्ना बेलामा से फरक पट्टि गेल भा कलसे ऊ तापक्रमको कारणले कुछ घटना वा कुछ भर्ना भिठा सक्रिय होइन समय नमाया छोटी होइन ओसीको हुइटिबा कलसे उहाँ कुछ असर हुइटिबा कना एक ठो मुख्य सूचक हो अब हाम्रो यी बडलटिगेल परिवेशमा टमणमय लडेक बाट बटुनु तापक्रम ब्रह टिगेल कलसे हिउँ पग्लना भिठा ऊ हुइल कलसे पानी बहना पानी बहरनामा फरक पर्ना हुइल पानी बाहन कलसे जीव जुवार हुकनक नेङ्ना घुम्न फे बरलना हुइल हुकनक आवश्यकता फे भर्ना हुइल हुकनक लड्का जन्मिना समय आँडा सही समयमा फुट्ना नि फुट्ना फरक पर्न भिठा हुकनक संख्या घटना भर्ना भिठा कटरापय प्रजातिमा त तापक्रमको कारणले मुसरा बन्ना मुसरिया बन्ना प्रक्रियामा फेर तापक्रमले फरक पठा कटा तापक्रम हुइल कलसे मुसरवा निक्रण कटा तापक्रम हुइल कलसे मुसरिया बन्ना हुइठा हाम्रा अब जुन सापनको बाट बटुटी बाटी यी त जलवायु परिवर्तन एक ठो सूचक जो मान पर्छ
1: वास्तवमा भन्ने हो भने यो क्लाइमेट चेन्जको त एउटा इन्डिकेटर स्पेसिस नै मान्नुपर्छ र त्यसले अघि पनि भन्नु
4: अपना जाउँ टम्ना कली मनै ओ जनावर हुकन बीच डोन्न बढ्न बाट ओसिन कौनो उदाहरण बा प्रत्यक्ष कहाँ कैसी हुइल रह कौनो उदाहरण देहे सिक्दी
1: यस्तो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ मान्छेले बुझेर त होइन अब
2: हिमा कसिन मिठा कलसी मनै बुझबुझकट नाही नै मनिनक उप आक्रमण हुइल मनै अपनिहन असुरक्षित महसुस गर्न कलसी रिस उठ्न आक्रमण गर्न उट स्वाभाविक हुइल जस्तो हाम्रो गाउँ ठाउँमा जाइ बेर जस्तो कहीँ सप काटल कलसी उही मर्ना सेफे सब पुहन चिन्ह परल कैखन काकर कि बिरुवा कराए गेल से डाक्टर हुन देखाइ पर्न हुई कारणले मार्जिना बाट हुई दोस्रो बाट गाउँ ठाउँमा घटना घटस्याकल कलसी सप एडिक्टिक ओहो हेर्न हेराइ नकारात्मक भए जेठा ऊ हुई कलसी उही प्रतिकार गर्न कैखन होइन मर्ना उसिन मेरी ओही होइन इकोलोजिकली भाषामा कहबेर प्रतिशोधात्मक हत्या कैखन कति हाम्रा ऊ मेरिक समस्या सापनकोमा ढ्युर बा
1: धेरै नै छ
3: म्याडमलाई प्रश्न गरे
4: म्याडम हन प्रश्न गर्नु उनी से सम्बन्धित ऊ जौन प्रतिशोधात्मक हत्या कना जौन बा ऊ अपना बचक लाग मर्ना खाना बाट बाजे ऊ जनचेतनक अभावले फे हुई वहीमा म्याडमका का राय बा हाम्रा जनचेतना कसिक बढाइसिक जै
5: अब यसमा मैले एउटा सानो कुरा भन्न चाहे जस्तो
6: म यही म एक ठो बाट कह चाहटु एक छो मै फिल्ड भिजिट म जैटी रहनु जैटी जैटी एक ठो सपा डेक परल उहाँ सपा डेक परल र डग्री म एकजना 7-8 वर्षको लड्का फे आफन दाइसी जैटी रह तब लड़का अपन डाइसी का कल कलसे हमन काटी टोल का मन बलाई टोल का सकु मन मिलख ई सब पहाड़ मारिक कहल काहेक मतलब का कलसे सब डेक्टी की मारा प्रथा कना सोचाई ऊ लड़कनक दिमाग में बाटिन कलसे उट हमार सकु लड़कनक सोचाई में बाटिन इट उट कलसे हमारा सुरुआत कहाँ से कर पड़ल कलसे घर में से कर पड़ल यहीं बचाई प्रथा कैख खटरा महसूस तो हुई ठा आग अपन सपा डेक बोट डर लगठा का सपा हो बिशा हुई कलसे काटी टुजे बिकना डर लगठा काट डाली तो फिर विषाहा सोचोर निजै टी हाम्रो फर्स्ट नम्बर त अपनाइ हन बचाइ खोज्ती नि त हाम्रो मर विचारमा विज्ञ हुक्र रहलसे फे रातख देख्ल कलसे देख्ती कि त निचे नसेखे नि त वाकर त फुन्का हेर्क वाकर मोटाई कपार कसिन बाटिस फुसी कसिन बाटिस आँखी जीव निक्रैना तरिका हेर्क सकु चिज हेरही कलसे बल्ल यी सम्प बिखानी हो कैख कहीँ विज्ञ हुक्र फे एक ठु सामान्य मन्या हो ख हेर्ना हो कलसे साम डेक डरैना ओ यहाँ मार जैना स्वाभाविक हो ऊ मानवीय स्वभाव हो मनैया यही हेन बिखा जानख याकल पृथ्वी जोगै नाम भारी महत्व बाटिन यही मारटु अथवा पर्यावरणीय चक्र बिगार्तु कैखनि हो यी आफन भित्र सियाल आफन प्रतिरक्षा करकला हो ओहोर से करा बाटबा लिरौसी फेनि हो भारी करा बाट हो सपा कटिकी कौन कौन मनाइन त यी एलर्जी हुइटन ऊ उहाँ सपा देख्लसी यहाँ एलर्जी हुइटन डाक्टर साहबुकन यी बात थाहा हुइन ढेर मिनट बाटबा ओहोर से हमार कौनो ग्रामीण फेक मा साप मार्क खैठ अथवा सपा डेक्टी की मर्थकना नै हो सकु तीन करोड नेपाली के दिमाग में ऊहो बा रात ख अंधार में न्यांग बेर नम्मा कुछ देखल डाबल चुस्स कुछ गार गरल कलसे देव मही सपा काटल की कना शंका लठा दिमाग में जो हमार ऊहो बैठल बा एक घड़ी हेरी डॉक्टर उठे पास जैबी कह बेर फे उन्नी मानत आजकल एकदम बिसारी खाल मन में त छोटी कुछ बात हुई थी कि हार्ट अटैक हार्ट फेल हुई सक था सांप कना छोटी हो तर मनैनक में एकदम डर पैदा करना
4: डरका कारण अभिजन मैडम बटै नै नि ऊ अपन प्रतिरक्षा करेक लाग मर्ना ओर लग्ठा नै ससाङ जी केहेन फे उहे प्रश्न ऊ सप फेट प्रतिरक्षा करेक लाग त ऐना हो मही हन मनै कुछ बिगार कर लग्ल कैख ऐना त हो नै नै त ऊ फे खोज खोज के मै कटम कैख ऐना त नि होइन
1: हामीले यो जुन मानव वन्यजन्तु
2: उसीको न्याय हाम्रो जुन मानव वन्यजन्तु द्वन्दक बाटबाट भेटे हाम्रो अक्सर द्वन्दकै कठी तर अक्सर कबु कबु काभी ठाकलसे यही न आब हाम्रो सह अस्तित्व वा असमझदारी कना शब्द हान त झुर मूलधार मर्यान पर्न आश देख पठा काकर कलसे द्वन्द कलसे त द्वन्दमा रहल दुनु पक्षी हान मै द्वन्दमा बाटो कना ठाँ रहा तर मानव हो वन्यजन्तु केसबाट वन्यजन्तु हुन त यी द्वन्द हो अथवा यी झगडा हो कना बाटो होइन त ठानी र टिन ऊ त आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा करकला चरकला नकलाग अथवा प्रजनन करकलाग न होइन हो उभवर्ष कुनै फेरि जिनवार मनिन आक्रमण गर्ना कलक आफ्नो प्रतिरक्षाको लाग जो गर्न हो जब होइन खतराको महसुस हुन्छस् जस्तो साँपनको केसमा हेरी कटरापय बिस निछोडक सुक्खा कटाएर ठा साँपनक हरेक फेरा बिक्ट निछोड रहट ऊ स्याकलसम्म आफ्न प्रतिरक्षा कसिक करसेजी ठा ओसिक गर्न हो अन्तिम विकल्प कलक त ऊ आफ्न प्रतिरक्षा करकलाग आफन ठे जौन हतियार बाटिस ऊ प्रयोग गरुए हो तर औरो जिनवार हमारमा फरक का कलसे हाम्रो कुनो निर्णय लिन आसे पहिला कुनै स्वाच त सिक्ठी जे हो यीमै करम कना ओ कैरना बीच का जो ग्याप बा ऊ ग्याप में हमरो नाही असीन हो कई खन डांसे सोचली कलसे त समस्या त कम कर सक जाए कना आशा लागत महीन ओई व्यवहार परिवर्तन का जोन बाट बा यही न हमरा एक ठो कमरा का समूह का रूप में निहर कना यही न समूह किटिया खन एक ठो मनया का करना परिवार का करना समुदाय का करना किन ठो लेवल में हमरा सोच ली हो ऊ अनुसार का संदेश बनेलसे वाकर प्रभावकारिता फे मजा हुई कना आशा लागत महीन
1: मेसेज पनि बनाए भने सायद त्यसको अलिकति पेनिट्रेसन पनि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई
0: अब हाम्रो सुन्ती बाटी सर्पदंश सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश आज हामीसँग बातचितमा बाट श्री शशाङ्क पौडेल वन मन्त्रालय वन अधिकृत श्री सबनम पाठ तथा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका पहिलो अध्यक्ष एवं सञ्चारविद डाक्टर निर्मल रिजाल शशाङ्क जी अब तिनठो लेभलका जुन बाट बटुली जे उहीमा आफ्नो कुनो सन्देश बाट ऊ तिनियो लेभल हन घर व्यक्ति वा समुदाय हन
1: व्यक्तिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने सबै सर्प
2: व्यक्ति चाहिँ कहाँ बुझ परल कलसे सक्कु साँप बिखा हानेर त सक्कु साँप मारे डाँडा पर्न जरुरी निरह सबसे पहिला ऊ बाट व्यक्ति बुझल कलसे सबसे पहिला काम निमिना हुए घर परिवारक मनी फे एक और झन बलगर से फैलाइ परल सक्कुजना यी बाट बुझ परल ओ समाज बन एक ठो मेरिक सर्पदंश सम्बन्धी हमार पूर्व तयारी का बाट घर परिवारमा फे पूर्व तयारी का बाट घर परिवारमा फे हेर्न हो कलसे हाम्रो विपदका बाट बटुठी हाम्रो बराबर विपदका बाट बटुठी तर खास कै गरी हेर्न हो कलसे मानव वन्यजन्तु द्वन्द ओ सर्पदंश फे पोइन्ट हिसाबले हेर्न हो कलसे यी फे डिजास्टर हो नि त क्युमुलेटिभ हिसाबमा हेर्न हो कलसे त यी त भारी भनी त यी विपद चाहिँ हाम्रो कसिक लड्न हो त कना विषयमा सामुदायिक स्तरमा योजना बना गइल अथवा के हो न साँप डस्टार कसे का गर्न त कसिन तयारी बा कहाँ जैन कसिक गर्न ऊ बेला स्वयंसेवक खुख के जैन ऊ निहुलसी एउटा के जैन केही होइन सम्पर्क गर्न गाडी कहाँ बा एम्बुलेन्स कहाँ बा कना मिरिक समुदाय लेभलमा कुछ पूर्व तयारी होइन हो कलसे जीवन जोगिन प्रयास सहज रूपमा गर सक्छ
1: पूर्व तयारी हुने हो भने चाहिँ जीवन जोगाउन पनि
4: रणनीतिक हिसाबले तयार गरिसक नहु कलेसे याकर सामना सहजै गरिसक जाय कनबाट हन हेरेबर मै म्याडम हन पुछे चाहटु अब स्थानीय सरकार हुक्र प्रभावकारी अथवा कही अधिकार के हिसाबले फे उहाँ हुक्र अधिकार दे गैलक अवस्थामा स्थानीय सरकार हुक्रे फे सर्वदंश सम्बन्धी एक ठो मुद्दा उठैना भ्याला हुइलक हो उहाँ हुक्र कर्तीबाट निहुइट अथवा काकर पर्न हो कना आश लागत काकर कलेसे उहाँ जौन रणनीतिक हिसाबले समुदाय स्तरमा संगठित भएका जौन काम कर पर्न बाट बटोइला ऊ कलक सरकार सहयोग गर्न हो
5: यसमा चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ के छ भने जस्तो सरकार
6: मरेहीमा कना काबा कलसे अब तिन तहको सरकारमा नै अब यी सर्वदंश सम्बन्धी काम गरेर पर्ना कलक मुख्य भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको हो स्थानीय सरकार जो हेर्न कसीको सापनका कटाइमा से बस्ना सपवा दस दार कलसे कहाँ जैन टोलमा कहाँ कहाँ ढनाइ उटवाकर टाइम रहत फे ओट्रा समयसम्म वाकर उपचार गर निषेक गेल कलसे त वाकर ज्यान फे जाइसकर बिसाहरल कलसे ऊ बाट फे बुझाइ परन सबसे पहिला त पालिकामा नगरको वडामा प्रत्येक वडा बजेट वडामा याकर टोली बनाइ पर्न जरुरी बा प्रत्येक वडामा एक ठो टोली बनाख प्राथमिक उपचार कसिक कर्ना लघक उपचार केन्द्र कहाँ बा काटदारल कलसे काकरनाकै एक ठो समिति जो बनाइ पर्न जरुरी बा दोस्रो समिति सरकार से स्थानीय सरकार से यी काम करक लाग हमन वार्षिक रूपमा कतरा पैसा चाहिँ कैख इस्टिमेट गर परी ऊ इस्टिमेट कैख ऊ पैसा उहाँ धर्ना सबसे पहिला त सापन काटे हे निडिह परल ऊ फे मनी हिल दुनु बाट हुई परल सबसे पहिला करलाक हाम्रा घरक आजर पाजर झपासु नि ढ्याउ हुइल तर सकु जहनको घरक अवस्था त बराबर नि रहन उ बाट वडाक अध्यक्ष हन नगर प्रमुख हन थाहा रहन उ हुइलसी सबसे पहिला त सरसफाइको लागि बजेट छुटै परि काकर कलसी उहाँ कोनक सरसफाइ गर्न समय फेरि रहन केक्रो छ सात ठुल लड्का रहन केक्रो दाई केल केक्रो बाबा केल बाट उ अवस्थामा बिहान चार बजी से राति एघार बजीसम्म काम गरे बेर उहाँ कोन आफन लड्कन रिझा पका ख खवाइ निसेक्न डाइन फे बाट उ मेरिक अवस्था रहन मनी फे बाट हाम्रो लेभल छुट्याइ परल उसैको घर सरसफाइ आफै फेरि गाउँ घरमा काठी से खाना रिथाएको खैना परिवारबाट महामकन काठी कहाँ ढर्ना ऊ कोनोमा कहाँ साम बैठ ऊ कच्ची घरमा त क्वाठा क्वाठा ब्यारहन नि रह घरम परल बिला कसी कटुना हो राठका बिला बनगेल कलसे का कर्ना झोल फाङ्का सुट्ना हुल झोल लगाखा सुटा बेर फे पक्की घरमा फेर राठका डेङ्गना साँप फेबाट ओसिन ब्याल म कसिन कसिन मेरी प्राथमिक बाद जान परत कैख सकु बाट उहाँकन जानकारी गराइ परत आफन विशेष कैख उहाँकन छाइ छावन जानकारी दिह परत काकर कलसे डाई बाबन काम कैख डटखर ख आइल रह खा पिख सुट लग्ल कलसे लड्काउ यहाँ कसी अस्पताल त सकु लघ लघनी हो तर प्राथमिक उपचार केन्द्र कहाँ ढन्ना ऊ चाहिँ एकदम जरुरी बा
4: स्थानीय सरकारकै ध्यान पुगाएकोला का गर पर्न जरुरी बा
5: त्यो चाहिँ हामी वडा अध्यक्ष ज्यूहरूसँग
6: स्थानीय सरकारको ध्यान पुगाएकोला स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष ज्यूकनसी मजासे छलफल गर परल गाउँ घरमा स्थानीय अगुवा हुँ रह उहाँकन फेरि सहभागी गराइ परल उहीमा वडा वडामा यी कार्यक्रम गर परल सुरुमा चाहिँ एकदम करा बा वडा वडामा कार्यक्रम कै खेल जैन जरुरी बा नै त कलसे यी सफल गरैना करा बा काकर कि आज हाम्रो कर्ली दोस्रो जारक महिना आइल कलसे सापनको कटाइ कम हुई दोस्रो फेरि गर्मीक महिना आए फेर साँप निकलना बेला उहाँ बिस्ता से कही उहोसे हमार कर काम बालुमा पानी दारस ना हुए जौन लेभलमा से हाम्रो काम सुरु गर्ल बाटी उही से उपर जैटी रह तर नागिरकना हिसाबले हाम्रो काम गर्न जरुरी बा
4: बजेट नन्न जरुरी बा यही हो न औपचारिकता देखेक लाग बजेट फे नन्न जरुरी बा
5: बजेट नै छुट्याउनु जरुरी छ किनभने बरु धेरै नहोला
6: बजेट चाहिँ छुट्याइ पर्न जरुरी बा बेन ढ्युर नग्नि हुए तर सुरुवात गर्न जरुरी बा जहिले करबेर सचेतनाको कार्यक्रम जटा खजाइ पट्रह काकर कलसे सापन से बज्न सहज बा करानी हो हुक्रा खप नहे कटना नि हो नि त जस्तो झपास बा हाम्रो घाँस काट गैल ब्याला च्याप्प पक्रली कलसे ऊ खटरा महसुस गरल नि त उटा मही मारकला बाकना हुइल दोस्रो कटना हुइल उटा आफ डगर जाइ नि पाइ नि त असिन नसिन बाट जस्तो हाम्रो टिना बारी हुइल गोभी बारीमा हुइल असिन नसिन घटना फि देख्ला ओसिन ठाउँमा जाबेर फे तनिक चना खोख जाइ परल कुछु बाँकी कैख सोच विचार गर परल सरसफाइ बिबा हाम्रो निकाल बाटी पानी चल्ल बाटी सकु देख पर्था तर फे कन बेला मनेनको दिमाग कहर गिल रठा कहाँ सोच टिरना टिना बारीमा जाबेर फे ध्यान ओहिमा निरहस्याकट असिन बाटले फे हुइसेक था
0: मैले
5: अन्त्यमा के भने यो कार्यक्रम असाध्यै
6: राम्रो मै अन्त्यमा का कहटु कलसे यी कार्यक्रम बड मजा लागल महिहन यी सुरुवात कलक म अपन हकन ढियोर झुठाने बाटबा मै एउटा बाटका जोर दिएटु कलसे यी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ल कोर्से महिहन फन काकर आइट कलसे यी वन मन्त्रालयको योजना हो कि खैन हो तर उनी हो यी सकुजानका हो सकु मन्त्रालय हो सकु 3 करोड नेपालीनका सज्या हो कना हिसाबले जैलसे हुई यी मन्त्रालयका ऊ मन्त्रालयका कैख छुट्याइबे तनी कप्ठ्यारो हुइठा यी वन मन्त्रालय केल ठर्नानी हो कि शिक्षा मन्त्रालय सकु 25 मन्त्रालय सकु मन्त्रालय आफ्न कार्यक्रम धर्क ग्रामीण समुदायमा स्थानीय सरकार मार्फत पुग्ले कलसे यी कार्यक्रम सफल हुई ओ हाम्रो सकु जहन फाइदा हुई ओ वातावरण चक्र निबिग्री वातावरण चक्र मजासी चलिकन महिला गत
0: धन्यवाद शशाङ्कजी
1: अनि यो इम्पोर्टेन्ट इनिसिएटिभ
2: विचार यी एकदम महत्त्वपूर्ण पहल हो यही म WWF नेपाल रोटरी सी मिल्कन नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हाम्रा फिल्डमा गर्टिरहल कार्यक्रममा कहाँ ठे मिलाखा आप गर्टिरहल निहुले सिके भविष्यमा करना कार्यक्रममा ढेकन यही न जन समुदायमा ढिउसे ढिउर सचेतना पुगेर से मृत्यु दर कम गराइक लाख हाम्रा सँग मिल्खन काम कना कना हाम्रा प्रतिबद्धता पल रहने बा तर मजा काम सुरुवात हुई बा वकर लाख रोटी लगायत सक्कु सरोकारलाई हुन्छन् धन्यवाद
0: डाक्टर निर्मल रिजाल सर्पदंश अभियानका लागि रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन काकसिन जनचेतनामूलक अभियान काम गर्दिबा बताइदिन
7: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनले
4: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन सन् 2019 काठमाडौँमा एक ठो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दरहला सर्पदंश विषयमा जहाँ चाहिँ विभिन्न मुलुकके विज्ञ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुँक्रे अस्ट्रेलिया से युके से भारत बांग्लादेश नेपाल सक्कु मुलुकका विज्ञ हुँक्रे जुटखा एक ठो सम्मेलन गर्दरहली ऊ सम्मेलनका निचोड अन्त्यमा एक ठो निचोड कायल कलेसे जनचेतनाक अभावकै कारणले धिउर मनै सर्पदंश जोखिममा पर्थ ऐसिन जनचेतना राहत कलेसे हुक्रे ओसिन सर्पदंशक जोखिम मनसे बचेसेकर सर्पदंश निहुइट कलेसे मृत्यु हुन सम्भावना फे कम हुने रह ओसिन मेरिक सन्देश सहित ऊ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ओराइ जयकार आधारमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउँ काठमाडौँ एक ठो परियोजना निर्माण गरल ओ ऊ परियोजना 4 वर्षे अभियान के रूपमा काम हुइटिबा ऊ मध्ये मिरमिरिक जनहितमा जारी रेडियो सन्देश 11 ठो बा जौन मध्ये 5 ठो रोकथाम हन लक्ष्य कै खन करागिल बा कलेसे 5 ठो उपचार ओ ऊ मध्ये 1 ठो चाहिँ साँप पर्यावरण के अभिन्न अङ्ग हुइट कन सन्देश सहित का बा कलेसे 11 एक ठो महत्वपूर्ण सन्देश का बा कलेसे साँप काट डरले से का कर्न त कन एकदम महत्वपूर्ण ओहिमा कर पर्न का होट कै खन ऊ बाट ऊ सन्देश बुझैन कोसिस गर्ल बा ओस्नेह के रेडियो कार्यक्रम बा छोटी सन्देश ओ रेडियो कार्यक्रम मुलुक भरका 41 ठो FM रेडियोमा से प्रसारण हुन कर्था उही मस हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा से फे यी सक्कु सामाजिक सन्देश हन सामाजिक सञ्जालमा से फे जस्त फेसबुकमा से युट्युबमा से इन्स्टाग्राममा से फे यी सन्देश पुगाइ सेग्वी कलेसे विशेष कैख युवा हुक्रे जे सामाजिक सञ्जालका प्रयोग गर्था उहाँ हुक्रे जागरूक हुइसकिकन धारणा हो ओसिके पोस्टर बा पोस्टर फे दुनोर प्रिन्ट करागिल बा एकोर हाम्रो रोकथाम के सन्देश देले बाटी कलेसे एकोर उपचार के सन्देश देले बाटी यीसकको 5 ठो भाषामा नेपालीमा टो पर्लिबा ऊ बाहेक मैथली भोजपुरी अवधी ओ पश्चिम थारू भाषामा बा अब मै लास्टमा फे एकचो सम्झाइ चाहतुम हाम्रो वेबसाइट www.snakebitenepal.org यी वेबसाइट सर्च गर्बी कलेसे मै आघे कलक सक्कु सामग्री फे भेटाइसिक्जै ऊ बाहेक सर्पदंश होख उपचार कराइजैन एन्टिभेनम सेन्टरका फोन नम्बर यी कहाँ हो कौन ठाउँमा बा उहाँको सम्पर्कमा नै यहाँ के हो यी सक्कु बात यहीमा विस्तृत रूपमा दे गइल बा ऊ वेबसाइटमा आकुर धिर चिज बा अनुसन्धान हुइल न्युज पेपर अथवा पत्र पत्रिका छापा गैलक आर्टिकल हुइल स्वास्थ्य मन्त्रालय हो विश्व स्वास्थ्य संगठनका सर्पदंश सम्बन्धी प्रकाशन यी सक्कु बात उहाँ भेटाइसेक्जेट विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता हुनका लागि यी वेबसाइट महत्वपूर्ण रहन गरल बा यी परियोजना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रोटरी इन्टरनेसनलको रोटरी फाउन्डेसन का नबा वाकर एक ठो ग्लोबल ग्रेन्टले सम्भव भइलक हो उहाँकन फे हाम्रो ढेर धन्यवाद
0: अब हाम्रो सुनिली सर्पदंश अभियानमा रोटरी कर्लक क्रियाकलापको विस्तृत जानकारी आजकी रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा आपन अमूल्य समय देख यी छलफलमा सहभागी होडेलकमा हाम्रा विज्ञ हुक्रप्रति हार्दिक आभार तथा ठ्यु ठ्यु धन्यवाद। आप सुनि यी जानकारीमूलक रेडियो सन्देश।
8: मुर्गी दाना देना ब्याला म काकर लट्टी फाजा दिअब न
9: एकटो तपावाका मुर्गी न फार छे लट्टी से डुरेले से बखाकी आनो हाली छत
8: तापन जिस्काई चलाई नि होइ थी नै त अमन दत स्याकन बेन घर भीतर आइ लागि कल से भगै दि
9: फार भीतर पेट का मुर्गी मुआडी व खाडी कै भगाई खोज लखो का
8: आर म कीरा फटिना मुर साप सिर निस्याक कै ख फलाम को जारी लगाइल बात तप मुर्गी खेती पुगाइ नि थे कि बेन अपना दाखी डुरेर बिना
9: हो बिना त का करना हो तप देखती कि डर लाग लग्न रहेछ देव तप त अपन घुमका बारी ओत कर गिन्ता
8: हमरे के सापन से डरै ना नि भनि मुकर थे अमन से डरै था यदि क्यों जान अनजान म चलै दति पति र छा करत लाग वा अपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
10: सापन से दूर रही सापन रिस नि लगाई वा नि जिसके साप मने देख डरै था नि तलाख दूर रलसि साप नि दस्त तर मुकर खैना खाजा बाहिर निस्कल मेरा म खास काटा बिल खाल बिल ज्ञानदेव छुबिरसे मनै मही मार्गबाट कना समझ पट्टी र फ्याक्न क्रम साप दस लाख अर्थ मनै सापन व्यक्ति कि मारक लाग रथ ओसी को करबे फे साप दस लाख अर्थ
11: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था।
0: आजकी रेडियो कार्यक्रम सापन्से सहअस्तित्वमा रहकलाग व्यक्ति घर परिवार ओ समुदायक भूमिका महत्वपूर्ण हुनाबाट जानकारीसँग नेपाल सरकार वन मन्त्रालय स्थानीय सरकारसे मिल्क साँप संरक्षण गर का कसिन कार्यक्रम सञ्चालन गर शेक्जिठा कना बातचित फे सुनली याकरसँग साँप पर्यावरणको अभिन्न अङ्ग हुइट हिक्रथे बाँच पाइ पर्था हिकन पर्यावरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहना हुइला कोर्से सापन संरक्षण कर पठाकना जानकारी देति ऐना अठारक और विषय प्रसङ्ग लेख ऐना बाचा गर्दै आजकी प्रस्तुतिमा से सहकर्मी सङ्घर्याङ्कनकसँग म पुष्पा के बिदा हुइटु नमस्ते।
4: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान पहुना हुक्रे बटवैलक उहाँक निजी विचार मान्जिने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तरफ से अभिव्यक्त हुइलक आधिकारिक विचार कैख माना नि हुइ।
12: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा हो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका सँग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रक सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका सँगसँग विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लब हुकन्से जनहितकला प्रस्तुत।
13: यो कृष्ण सार एफएम
14: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
15: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
16: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
15: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
16: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चरिस्ट। एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
15: अनकल सेवाहरू
16: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्ने, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ECG, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
17: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
16: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
18: आमै नि, सामान खरिद गर्ने यति लामो लिस्ट सर, र हेर्दा नेपालगञ्ज देखि लखनऊसम्म धाउनु पर्ला कि क्या हो?
19: हैन बहिनी, यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन। अब यी सबै ब्रान्डेड कम्पनीको सक्कली र उचित मूल्यको सामान एउटै विशाल बजार मारुति मेगा मार्टमा पाइन्छ। यो रुपैडिया बजारको सब्जी मण्डीको छेउमा रहेको मारुति मेगा मार्ट हो। बहिनी, त्यहाँ शादी विवाहको सबै सामान, सौन्दर्य प्रसाधन, सुटिङ, सर्टिङ, साडी, अन्डर गार्मेन्ट्स, होम एप्लायन्सेस, ड्राई फ्रुट्स, विद्युतीय उपकरणहरू, आर्टिफिसियल ज्वेलरी, किचन तथा टोयलेटहरूको सामान आदि सबै सामग्रीहरू एकै छाना मुनि पाइन्छ।
20: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपाडा रोड रुपैडिहा बजार। मोबाइल नम्बर 98-699-64-581।
21: अया, कान दुखेर हैरान भइरहेछ, के गर्ने, कहाँ जाने होला?
16: बहिनी, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? बिर्नोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्राविधिकद्वारा दैनिक रूपमा कानको परीक्षण जाँच गर्नुका साथै अपरेसन गरिन्छ। कान नसुन्ने बिरामीहरूको लागि कान सुन्ने विभिन्न मेसिनहरू सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध गराइन्छ। कानमा पर्न गएका विभिन्न प्रकारका बाहिरी वस्तुहरू, कानको कानेगुजी निकाल्ने, कानेगुजी तथा अन्य कानका फोहोर वस्तुहरूको सरसफाई समेत गरिन्छ। लामो समयसम्म कान पाकिरहेमा वा पिप आइरहेमा कान चिलाउने, कान दुख्ने, कान कराउने, कान डम्प हुने, कानबाट तरल पदार्थ निस्किने, कान कम सुन्ने बिरामीहरूको कान परीक्षण गर्नुका साथै प्राथमिक कान उपचार तथा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइन्छ।
22: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ। अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
16: विस्तृत जानकारीको लागि ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा, फुलचक्रा 5 नेपालगंज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-244, 98-580-81-244।
23: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलेसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979, 081-530-220 र 98-41-586-979।
24: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
25: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
26: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज, तिनकुने, काठमाडौँ।
27: पश्चिम नेपालकै शैक्षिक केन्द्र नेपालगञ्जमा तपाईँका सपनाहरूलाई साकार पार्ने प्रतिष्ठित नाम हो मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल। अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने यस विद्यालयमा कक्षा 11 मा विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ।
28: गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट मार्गदर्शनका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
1: फोन नंबर 081-531-359 98-582-6666 र 98-584-488
27: मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल शीतलनगर नेपालगंज बाँके। एसईई परीक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण भाई बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाईका साथै उज्जवल भविष्यको कामना सहित यस आदर्श मावि नेपालगंजमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विज्ञान तथा व्यवस्थापन संकायमा कक्षा 11 नयाँ भर्ना खुलेको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सीमित सिटका लागि भर्ना खुलेकोले छिट्टो सम्पर्क गर्न हुन पनि अनुरोध गर्दछौ।
1: हाम्रा विशेषताहरू: भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न, यातायातको सुविधा, उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, एसी क्लासरूम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू। प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ
27: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा साइन्स अन्तर्गत बायो र फिजिकल ग्रुप र म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स, होटेल म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज र फाइनान्स अध्यापन गराइने।
1: सम्पर्क आदर्श माध्यमिक विद्यालय सुर्खेत रोड नेपालगंज, फोन नंबर 081-537-994, 98-587-994, 98-588-195 र 98-588-197।
13: यो कृष्ण सार एफएम
14: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसाय कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
2: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा।
1: कोहलपुरमै पाइन्छ टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
4: हेत्तेरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
4: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
3: अनि सुरक्षाको कुरा नि? अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
4: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
3: अनि शुल्क?
4: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
5: हाम्रा विशेषताहरू:
4: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
3: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
4: खेलकुदमा विशेष जोड,
3: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
4: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
3: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
4: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज 12 बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081-538-505।
6: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
7: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
6: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
7: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
6: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
7: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
6: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
7: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
6: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
8: आशा तो अब हमरो घर भी नवा जस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
9: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, बीपी चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98-86-073-70 और 98-195-067-82।
1: सूचना सूचना सूचना, स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
0: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिशियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राही द्वारा थायराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
1: हजुर, थायराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500।
0: डाक्टर अल्ताबन राही, MD इन्टरनल मेडिसिन, TU एन्डोक्राइनोलोजी, दिल्ली। वरिष्ठ फिजिशियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट, NMC नम्बर 11504।
1: सम्पर्क ठेगाना: सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्राली, बीपी चोक, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 081-531-860, 081-531-861 र मोबाइल नम्बर 98-584-861। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्राली, बीपी चोक, नेपालगञ्जमा आजै नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र 500 लिन नभुल्नुहोला।
10: यो कृष्ण सार FM
11: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी